0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकित आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
6: With Nepal, we have an expansive agenda.
7: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
6: Partnership that we have with Nepal.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
8: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
10: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
11: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
12: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
14: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया।
14: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4 lakh 62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
14: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. A report. The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
15: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended

0: Dagsang ishay le dagsil urik sanadats ngaji akashwani le ne jun chik tangin sngadog chutzot urgu chaduk kasata tusot sapigasting le dagsena nasun sanazaden.
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

0: Ibu Akashwani le in kasetiyang chandolma na natsu sanachat khamde stone sose nanga khamde japtok tang talikon school la khamde ngeston pa doctor tashitin le si zongi khamde sponbo chenmo doctor rinchin chojdol tang khalche khamde sponbo chenmo kun tang nyampo nginchi gi ziskor jate tato chale na chate nok ziskor ring la khongunis ayushman arogya mandir saspol yangthang himishupa chan yungla khalche tang basgo kunis ziskor jate Natpa Gunla Kamde Japstok Tang Kamde Dani Zao Gunla Zixa Zatenok Yang Konguni Special Development Package Tang Kepex Bajari Nang Loga Cherji Dulin Yotkan Guni Skola Zixtok Lena Zatenok Kalse Tang Saspoli Dani Kamde Stonas Gunika Yarga Sitsat Guni Itzim Pongon Chuga Zatenok Inna Himi Shupa Chani NTPSC Sajan Las Kunspustak Metkanika Kamde Niston Peshkyo Mongon Chuga Zatenok In Yang Building Gun Jung Altada Sangola Skyon Yutkan Gun Medkan Choches Tang Zofkyo Choches La Engineer Gun Tang Gamuli Tuzmi Gun Tang Yampo Gyokspa Rang Tsospa Boches La Lezong Kamde Spon Bochin Motang Kalse Bimo Gun La Kaspela Zatenok Bazgoy Kamde Stonas Gunika Hunme Lazisko Zat Tenok Ika ECG Tulko Jikte Yotkan Skola Jipso Betolar Sir Merkan Skola Gusong Tenok Tanji Yerges Gorka Nika Lenanga Ninchigi Doding Jig Zamling Chilani Koryo Gijar Escap Dang Ujung as the Naksostan Koryu Glaskung Yang Tabling Laskung Niske Zungdela Tarik Zatenok Dozing Inanga Ladar says Tanji Yerges Epia Tabling is called La Sundo Zatenok Yang Kaspa Gunikani Tabjusi Toras Paspelen at Zatenok Tangse Nanga Jungi Chorne Bulun Tangchesi Pantos Gunis Kola Hagotangchesi Degrim Jig Sindhu Infrastructure Development Corporation Chokne Saltenok. Itu Sirkwe Chokne Laglina Kyon Yotkani Pulontang Muldok Salkan Guniskola Sirkwe Manager Ganbastanzin Pasang Tang Kung Timi Chokne Hagos Peltenok. Bulon Gun Yontan Lobjongne Tsongzla Zachestang Tsepi Discuss Pinches Guni Nanga Salin Yotkan Skola Shadzatenok. Inna Jingla Sirkwe Chajin Nangjin Buloni Pantok Denkan Guni Ming Togunang Zatenok. Gyagari Singes Tanspe Chucha Donyang Indus Water Treaty Laglina Kyonga Laglinina ma kyonga borte nok yang ibo tede tsukpa borches inok nam tsukpa Pakistani samcham sista chigi chuzngan gun sawana mirgak molte gyagari chi tonchani dingchas parandi jeswa respang phuda chatyo tenok khongis Pakistani chi lonkhung is lonpe china pc gyangkhung phuche si chajis ko la jocha spelkan bolan salin jiktang Indus Water Treaty Toga Takchor Lenkan Boyule Shunskyo Betokne Lentenok Yang Ibo Samsam Se Stanshik Tang Delte Inok Moltenok Yang Stanshi Gyabga La Gyagari Tapchu Salpo Yotenok Yang Pakistanis Kongis Sakyati Nangni Junkan Stanshi Gichuzngan Gun Gyabga La La La Sishul Goz Moltenok
1: सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे
0: Chiton Sani Dingsas Parandi Jeswali Salpet Sospajigiscap, USA Shedzin Donald Tami, Nitubi Tongrele Toga, Jocha Spelkan Bi Yongchishani, Gagatan USA Paris Tongrele Toga, Kat Yongchis Guni Scholar, Tostugazaz.
1: ट्रेड डील की बात है व्यापार संधि की बात है जैसा आपको आपको पता था पता है कि एक से एक जून से चार जून के दौरान जो कि कल तक अमेरिका की तरफ से एक टीम यहां आई थी उनके नेगोशिएशन के लिए और ये जैसा कि आपने देखा होगा प्रेस विज्ञप्ति जो कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से जो जारी किया गया कि ये बातचीत जो दोनों पक्षों के बीच में हुई ये काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक रही और कंस्ट्रक्टिव रही तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और होगी और इस जो अंतरिम ट्रेड डील की बात चल रही है उसको दोनों तरफ दोनों पक्षों के बीच में उसको पूरा किया जाएगा दोनों तरफ से प्रतिबद्ध भी है दोनों पक्ष की इसको जल्द से जल्द पूरा करना है तो विशेष जानकारी के लिए विशेष इस बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर जैसा कि मैंने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसमें और भी चीज़ें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
0: Shichin Drupati Murmi Diring Padme Chengstak Kun Goste Salche Sinok Lelum Tin Khang Tingma Na Chur Ngime Chitun Ngis Tanskar Mangam Chungay Ka Sanche La Pulcha Se Tusse Din Yang Lelum Tin Khang Na Chur Gun Ngime Na Theng Chi Sanche La Pulkan Gun Shichok Spella Mika Ngije Rangul Na Sanche La Upload Chustyo Denok Khachang Gun Juna YouTube Ka Airline News Facebook Ka Airline News Yang X Ka Airline News Adversar Barthi Ka Upload Chustyo Denok Ina Tang Nyampu Akashwani Lenni Tana Chultun

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या चुप रहूं?
3: ये फिल्म लोगों संकर लंगेसला आकाशवाणी लेने संचेसला फुलेंजिकतांगिन
4: क्या है?

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दक्षिण शाही किशोर कुमार सलखने मेरे जीवन साथी फिल्म लु सनजच लुर चमखन इन पेन मजो सुल्तानपुरी यंग लुयांग श्रीखन इन पेन आर टी परमन
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised directions have come into effect immediately. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal had said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view of enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council, UNSC, to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative, P. Harish, said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. Harish was responding to Pakistan's permanent representative Asim Iftikhar Ahmed's references to the Union Territory during a discussion of the Council's annual report to the General Assembly. Union Home Minister Amit Shah today extended greetings on the occasion of the coronation day of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In a social media post, Mr. Shah said that Chhatrapati Shivaji Maharaj built a system of governance rooted in the ideals of self-respect, good administration and national defense, which instilled a new sense of confidence in the Indian populace. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। भारत ने कहा, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आवागमन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
6: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
5: Partnership that we have with Nepal.
4: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर मामले में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
7: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग लेता रहा है और उसके बाद ही वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई अनुरोध अभी बांग्लादेश के पास लंबित हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही।
5: The negotiating team which came from the
6: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
5: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
4: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। श्री पुतिन ने ये टिप्पणी कल सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान कही। एक दिन पहले श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए खुले पत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष वार्ता का आह्वान किया था। श्री पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें गंभीर नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस की युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। भारत वर्तमान में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बीच श्री पुतिन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अमरीकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार केंद्रों को निशाना बनाया। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
4: अमेरिका ने ब्रिटेन, डेनमार्क और कुवैत को लगभग $3 अरब के संभावित सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा कुवैत के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत कुवैत को लगभग $1.98 अरब की लागत से ड्रोन रोधी प्रणालियां और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं डेनमार्क को लगभग $84.20 करोड़ की लागत से 200 लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और संबंधित उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को लगभग $16 करोड़ की लागत से बड़े विमानों की सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड प्रतिरोधक प्रणाली और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ने 18 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं आपके साथ भावना। आपके बहुत सारे संदेशे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमारा एड्रेस अभी तक नहीं पता है, उनके लिए हम बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868 68753। और लीजिए हमारे पास संदेश आने शुरू हो गए हैं। कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का संदेश हमारे पास आया है, ये अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रीति खोरवाल का संदेश आया है जयपुर राजस्थान से, और भी बहुत सारे संदेश हैं हमारे पास। सबसे पहले हम आपको एक फरमाइशी गीत सुना देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि गीत की फरमाइश किसने की थी।

गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड ने इस गाने की फरमाइश की थी। ये कौन चित्रकार है, फिल्म बूंद जो बन गई मोती। और ग्राम जमुना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा और कौन कौन हैं? इसके अलावा हमारे साथ हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान। इन्होंने प्यार भरा आदाब हमें बड़े प्यार से किया है, तो आपको भी प्यार भरा आदाब। डीके, इनका भी संदेश हमें मिला है दिल्ली से। इसके अलावा जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पोल डिकोस्ट्रा, विलिस डिकोस्ट्रा, इन सब के जनकपुरी सहारनपुर से हमें जो है वो ईमेल मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने अपनी फरमाइश भी हमें लिखकर भेजी है, हम जरूर जरूर कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश सुनवाने की। दिलावर खान साहब हैं, श्रोता हैं ये रघुवीर नगर से। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, इनका संदेश हमारे पास आया है। ओम कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा जी हैं, और ये जोड़ा साहब जो है ना, ये गाना ये वाला सुनना चाह रहे हैं।

तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजतक खुराना, केशु रिधान खुराना, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। और जो मस्कीन परिवार है ना, ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से ये मस्कीन परिवार हमारे साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारे के सारे मस्कीन्स। इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला और गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी का भी संदेश हमें मिला है और ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म गैम्बलर से, ये वाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

एफएम गोल्ड, नमस्ते जी, नमस्ते भावना जी, ये सब लिखकर हमें बहुत सारे लोग भेजते हैं। और ऐसा ही एक संदेश है जिसमें ऊपर मोटा मोटा ये भी लिखा हुआ है, सेफ वाटर सेव लाइफ, यानी कि एक संदेश देना चाहते हैं और कहते हैं कि आकाशवाणी जो है वो हमेशा ही लोगों को कुछ देती आई है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो इसका ध्येय है उसके अंतर्गत हमेशा समाज में उन्होंने संभाव और बहुत ही प्यारा सा संदेश देने की हमेशा कोशिश की है। कौन है ये जो इतनी अच्छी बातें लिख रहे हैं? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से, क्या बात है। हमारे पास संदेश आया है, मास्टर खिल्लू परवेज हैं, बेगम इमराना नाज हैं, नवाजिश शेख हैं, दानिश शेख हैं, अमन आफरीदी हैं और राधा नाम देव हैं। इन सब ने हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, इन सब का संदेश हमें मिला है। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम, इनका संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। हमारी पसंद का गीत सुनवा दीजिए। ये बहुत ऐसी मतलब इतनी खास लाइन है ना, ये मुझे बार बार बार बार पढ़ने को मिलती है। हमारी पसंद का गीत भी तो सुनवाइए ना। अरे हम कोशिश करते हैं कि सबकी पसंद के गीत सुनवाएं। यहाँ पर सैकड़ों संदेश हैं तो आधे घंटे में सैकड़ों गाने कैसे सुनवा पाएंगे साहब। वैसे जो साहू परिवार है ना छत्तीसगढ़ से, जिनका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, उनकी पसंद का गीत मैंने निकाल के रखा और चलते चलते यही गीत मैं आप सबको सुनवा देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी शांति से हमारे सारे गाने सारी फरमाइशें सुनने के लिए।

इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह, एक नई डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देश के कोने कोने की खुशबू से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। आज हम कहाँ चल रहे हैं? लोनावला, महाराष्ट्र का एक खूबसूरत जाना माना हिल स्टेशन लोनावला, जहां घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें बेहद खूबसूरत झरने, दिल को लुभाने वाली झीलें, किले और बहुत कुछ है देखने के लिए। आपके साथ रहूंगी मैं, भावना।

लोनावला में टाइगर पॉइंट या टाइगर स्लीप नाम की पहाड़ी है, लगभग 650 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी। और इस जगह से नीचे की हरी भरी घाटियां, झील, झरने, उनको देखने का अपना ही मजा है। मतलब इमेजिन करके देखिए ना, आप ऊंचाई पर हैं और नीचे घाटी है, वादी है, हरियाली है, झरने आपको दिख रहे हैं नीचे। मतलब इतनी ऊंचाई से कितना अच्छा लगेगा देखने में, बस ऐसे ही लगता है यहाँ पहुंच के। और इस चोटी के आसपास जहां आप खड़े हैं, नीचे तो ये सब दिखाई दे रहा है, ऊपर आपके आसपास बादल मंडरा रहे हैं। क्या मजा आता है देखने में। और मानसून यानी जो अभी आ रहा है ना, बारिश का मौसम, इसके दौरान तो यहाँ की वादियां और भी हरी भरी हो जाती हैं। और टाइगर स्लीप को स्थानीय लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो वाघदारी के नाम से जानते हैं। वाघदारी मतलब दूरी से एक छलांग लगाते हुए बाघ की तरह दिखता है ये पॉइंट, इसलिए इसका नाम वाघदारी भी है। यहाँ पर सूरज को उगते हुए देखना, डूबते हुए देखना बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और इस जगह के ना थोड़ी सी पास में एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, जिसमें पानी सिर्फ मानसून के मौसम में ही रहता है। बहुत ही खूबसूरत है ये वादी, ये पॉइंट। मतलब शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतनी खूबसूरती है यहाँ।

उगते हैं। लोनावाला की कारला और भाजा गुफाएं बहुत ही अच्छी जगह है। पत्थरों को काटकर बनाई गई ये बौद्ध गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, और दोनों जो कारला और भाजा है ना, ये एक दूसरे से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कारला गुफाओं में अव्वल दर्जे की एकल गुफा के साथ साथ भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना चैत्य है। चैत्य एक मंदिर है, प्रार्थना करने की जगह, और इसके एक छोर पर स्तूप बना हुआ है। कारला गुफाएं भारत में हीनयान बौद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा चैत्य है, यानी मंदिर है, जिसे सातवाहन राजाओं ने बनवाया था। इन गुफाओं में ना आज भी 2000 साल पुरानी लकड़ी का बीम है, शहतीर कहते हैं इसे, वो बीम आज भी यहाँ पर बरकरार है। और कारला गुफाओं तक जाने के लिए खड़ी ढलान वाली जो पहाड़ी है उसकी चढ़ाई करनी पड़ती है, और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता होगा। मतलब टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी है भाई, और वहां तक पहुंचने में काफी मेहनत लग जाती है। और यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे ना, तो यहाँ उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो 3 हाथियों की बेहद शानदार नक्काशी के साथ शेर के सहारे टिके हुए एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मतलब इन सब चीजों को देखना बहुत खास है। बहुत सारी कलाकृतियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, नक्काशियां देखने को मिलेंगी। दीवार पर तबला वादन करती महिला की नक्काशी है, और भारत में जो 2000 साल पहले वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता था, वो वाद्य यंत्र भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की ये दोनों गुफाएं हैं यहाँ पर। इसके अलावा भूशी डैम है, लोनावाला के सबसे मशहूर और खूबसूरत नज़ारों वाले टूरिस्ट प्लेस में से एक भूशी डैम। यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल भी है। ये डैम जो है ना, पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका पानी एक बहुत बड़े आकार के कुदरती वाटर पार्क की तरह नजर आता है। मतलब आप देखिए, नीचे पानी जो है, मतलब डैम है तो पानी पूरा है ही, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, कितना खूबसूरत लगता होगा। और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ चहचहाते पक्षी हैं, हरी भरी वादियां हैं, ठंडा पानी है। ये डैम चारों पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है, और आसपास का जो कुदरती नजारा है देखने लायक है यहाँ पर। इसके अलावा ड्यूक्स नोज ये भी है यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ना, बहुत खास है। इसको ना जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो नागफनी कहते हैं, जिसका मतलब है नाक का फन। अगर दूर से आप देखेंगे तो एक नाक की तरह इसकी आकृति दिखाई देगी, या ध्यान से देखेंगे तो एक नाग के फन की तरह भी इसकी आकृति जो है वो दिखाई देगी। एकदम शांत जगह है ये ड्यूक्स नोज। यहाँ पर आप एकदम मतलब शांति के लिए जो है ना वो आ सकते हैं। और चट्टानी इलाके, घने जंगल से होकर गुजरने वाले लंबे सकरे रास्ते से यहाँ पर आया जाता है, इसलिए इस जगह को ट्रेकिंग, हाइकिंग और पहाड़ों की चढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। सचमुच इतना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि आपका दिल कहीं खो जाएगा, कोई छीन लेगा, कोई क्या ये जगह छीन लेगी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर और आज हम जहां की सैर कर रहे हैं उसका नाम है लोनावाला। पावना लेक लोनावाला की एक आर्टिफिशियल झील है और ये कैंपिंग लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कैंपिंग करते हैं और क्योंकि कुदरती नज़ारे हैं, सुकून देने वाली जलवायु है, तो यहाँ पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इसके पास भी बहुत सारे किले हैं, लोहागढ़ किला है, तिकोना किला है, विसापुर किला है और यहाँ पर आप कैनोइंग और बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं।

सचमुच मन छू लेंगे। यहाँ की हर जगह, यहाँ की हर बात निराली है। लोनावाला बहुत खूबसूरत है। यहाँ का ना राजमाची किला, ये भी बहुत खूबसूरत है। 2710 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले में अगर आप देखें तो यहां से, इस किले से सह्याद्री पहाड़ियों को देखना, शिरोटा बांध में जमा पानी देखना बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ इस किले में ना दो बाले किला, मतलब दो जुड़वा किले हैं, श्रीवर्धन और मनरंजन। आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए किले उस जमाने में बनाए जाते थे। और किले में ना बहुत सी प्राचीन गुफाएं भी हैं, मंदिर हैं, जैसे कि काल भैरव मंदिर। और इनमें से कुछ मंदिर तो किले से भी ज्यादा पुराने हैं। खास बात ये है, नारायणी धाम मंदिर लोनावाला के बीचों बीच है ये, और बहुत ही खूबसूरत सफेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मंदिर। इसे 2002 में बनवाया गया था। यहाँ पे गणपति, हनुमान, बहुत सारे दूसरे भी जो मूर्तियां हैं वो शामिल हैं। चार मंजिला है ये और लगभग 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। बगीचा भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का, देख के बहुत अच्छा लगता है इस बगीचे को। और सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम लोनावाला का, इसे देखना आप कभी भी मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ आए तो देखाइए, और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं तो इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये वैक्स म्यूजियम जो है ना, इसमें देश विदेश की लगभग 100 मतलब वैक्स मूर्तियां हैं। और टोल प्लाजा के पास बारसूली रेलवे स्टेशन से वैक्स म्यूजियम जो है सिर्फ 3 किलोमीटर है ये लोनावाला का। और इसका नाम जो है सुनील कंडलूर के नाम पर रखा गया है, जो मोम की मूर्तियां बनाने के जो है ना माहिर कलाकार है। और इस म्यूजियम में समाज सेवा, इतिहास, कला, साहित्य, पॉप संगीत, इन क्षेत्रों से जुड़े जो टॉप के लोग हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं, उनकी मूर्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, B.R. अंबेडकर की, कपिल देव की, चार्ली चैपलिन और भी बहुत सारी मूर्तियां जो है वैक्स इस म्यूजियम में वैक्स की बनी वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही खास है, आप देखेंगे ना तो आपकी नजर जो है वो ठहर जाएगी इन वैक्स मूर्तियों के ऊपर।

0: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, बातें हो रही हैं लोनावला की, खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावला की। मैं हूं आपके साथ भावना। लोनावला का कुणे वाटरफॉल बहुत ही खास है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को यहां आकर, यहां के नेचुरल सीन्स को देखकर। तुंगारली लेक ये भी बहुत खास है लोनावला की। इस झील का जो पानी है वो यहाँ के बांध से आता है। तुंगारली बांध जो है वो आसपास के जो हिल स्टेशंस हैं उनके लिए भी पानी का स्रोत है। बलवन बांध, ये बलवन बांध जो है इसे गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में भी जाना जाता है। खूबसूरत लोनावला की तस्वीर हम बना रहे हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
2: अच्छा जी,

कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन लोनावाला आप जरूर आ जाइए। रायवुड पार्क है यहाँ पर, वो बहुत बहुत खास है। 25 एकड़ में फैला है और पुराने पेड़, बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पर पेड़ों की देखने को मिलेंगी, क्यारियां फूलों की, सजावटी पौधे, बच्चों का पार्क, बहुत ही खास है ये रायवुड पार्क। कैनियन वैली यहाँ पर भी लोग जाते हैं, ट्रेकर्स तो खास कर यहाँ पर जाते हैं। इमेजिका एड लैब्स है यहाँ पर भी, मनोरंजन के लिए बहुत सारे जो पर्यटक हैं पहुंच जाते हैं अपने परिवार के साथ। और इसके अलावा मैप्रो गार्डन है लोनावाला का, बहुत ही खास जगह है। और यहाँ की पापना झील के बारे में हमने आपको बताया, रिवर्सिंग स्टेशन है ये, बहुत बहुत खास है यहाँ का। ये जो जगह है ना, सबसेट पॉइंट के रूप में इसे जाना जाता है। और राजमाची किला जो हमने आपको बताया था, उसके पास है ये रिवर्सिंग स्टेशन। बिसापुर किला, भैरवनाथ मंदिर, शिरोटा झील, बहुत ही खास है यहाँ, हर चीज खास है। बस आप मतलब आइए और थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हिल स्टेशन है, अपने कपड़े सही से लाइए। और अगर आप कोई भी वाटर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी सी ध्यान और मतलब सजगता जो है वो जरूरी है। बोटिंग करिए, कैंपिंग करिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स करिए, ट्रेकिंग ट्रेल्स, बहुत सारी चीजें जो है आप लोनावाला में आकर कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है, हमें यकीन है कि यहां पर पहुंचकर आपको यहां की हर चीज से प्यार जरूर हो जाएगा।

0: उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये तस्वीर प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। लोनावाला की जो खूबसूरत तस्वीर बनाने की हमने कोशिश की, उससे आपको ये महसूस तो हुआ होगा कि अगर हम इस वक्त लोनावाला में होते तो हमें कैसा लग रहा होता, कोशिश हमारी कितनी कामयाब हुई ये तो आप ही बता सकते हैं। हमने तो आप तक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की है पूरे मन से। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गुलचंद के साथ। घर आंगन 12:10 पर होगा, लेकिन उससे पहले समय समाचारों का। नमस्कार।
1: Medium wave kilohertz, shikstong apchung aksum yangnameters, nipia gyachu gyabji tansh chuzur gutang, FM megahertz gyatang chik tansh chuzur chi kangaji akashwani lini jun chik tangin. Nime chuzo chungis chaduk kaseta chungis tang petsukpa, filme lurik sanjas rapulin. Ina changmis ansmula, Mohammed Rafi tang gita datne, piasa filme lu sanajat. Lurchumajat kan zahir tang luyang stigajat kan, SD Berman.

कस्तस तिंगने किशोर कुमार ने याराना फिल्म लो सनाजात लूर समाजात का नंजान तंग लुयांग श्रीगाजात कान राजेश रोशन

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसिता किशोर कुमार ने गोलमाल फिल्म लो सनाजात लूर सुमाजात कान गुलजार तांग लोयांग श्रीगाजात कान आर डी बर्मन

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म टिक्रमेना का सता लता मंगेशकर तांग आशा भोसले ने पड़ोसन फिल्म लो सनाचात लूर समाजात खान राजेंद्र कृष्ण तांग लुयांस टिकाजात खान आर डी बर्मन

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कसिता स्तंजन डोलकार तंग ठोपाने सलकने जुंगलोरीक सनाजात

0: ngaje akashwani lene junjektain nyeme chucho chek chadu kasata tu so chapi yesting ne akashwani dilli ne hindi tang angrezi na nasul sanachat
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टोन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद। फौजी भाई, आज के इस समय के प्रोग्राम में सुनेंगे फिल्म गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज़ों में बेटा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलन।

लीजिए, अब सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में दीवाना फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आपने सुना साजन फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे समीर और नदीम श्रवण। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फौजी भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में अगला गीत सुनिए, सोनू निगम की आवाज़ में परदेस फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार नदीम श्रवण।

प्रोग्राम के अंत में सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ों में दिल से फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

0: Gaje Akashvani lene shunchik tain Nime chuchu chik tang skar mang apchu chadu kasata tucho chapi kesting ne Akashvani Delhi ne skunla urdina nasul Nisika midday news tang nistang chongka dopahar samachar sanachar
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम अज कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय टीम T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी पहली मर्तबा टीम में शामिल हुए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सहल बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीक़ेकार के तहत आम तौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज़ पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीक़ेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने

0: कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खुसूसी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने कहा है कि यह फैसला दरख्वास्त दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने की खातिर तलबा को इजाफी वक्त फराहम करने के लिए किया गया है। इससे कबल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जून थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन, जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था, वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। कई लोग मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। सीनियर पुलिस ओहदेदारान हादसे के बाद जल्द ही हादसे के मकाम पर पहुंचे और मकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। जख्मियों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तिसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरून मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक केरलम और माहे में कहीं कहीं बहुत शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारतीय आम का लुत्फ लेने और उसे फरोग देने के सिलसिले में दूसरे मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आज अमेरिका के सिएटल में एहतमाम किया गया। फलों के राजा आम के 100 से ज्यादा सरकर्दा दरामदकार इसमें शामिल हुए और यहां आमों की कई अकसाम को नुमाइश के लिए रखा गया था, जिनमें महाराष्ट्र से अल्फांसू और केसर, आंध्र प्रदेश से बागनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश से लंगड़ा और दशहरी और गुजरात से राजापुरी शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिएटल में भारतीय कौंसलर जनरल ने गुज़श्ता बरस जुलाई में यहां आम की भारतीय अकसाम को मुतारफ कराने की पहल की थी और भारत और ग्रेटर सिएटल इलाके दोनों में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकों के साथ शराकत दारी कायम की ताकि अमरीकी सारिफिन के लिए कॉस्टको जैसे बड़े रिटेल आउटलेट्स में भारतीय आम की प्रीमियम अकसाम दस्तियाब कराई जा सकें। इस साल अप्रैल में कॉस्टको के CEO के साथ एक मीटिंग के बाद इन कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके बाद कॉस्टको के स्टोर्स में महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म और इसके बाद केसर आम सारिफिन के लिए मंगवाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात प्रोग्राम में भारतीय आमों की कई तरह की अकसाम के बारे में बात की थी और आम की पैदावार करने वाले किसानों की इस फल को आलमी बाजार तक ले जाने के लिए सताइश की थी।
2: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2,60,00,000 मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1,000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती हैं। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 GW से बढ़कर 155 GW हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और

0: An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, where Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत

0: अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है।

0: मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गजे आकाशवाणी लेने शुंजिकताइन ये मिचुचोत निस्तांग पे छादु कसता निस्तांग स्कर्मांग अपचुआ चुकपा लदाख से लोरिक संचस लपुलेन इनाचामे सांसगुल्ला पद्मा दोर्जे सालकने इजुंगलू सनाचात।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े।

0: सेंसस 2027, हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कसता यांग चंडोल मातांग ठोपाने साल कने जुंगलोरिक सनाजात

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Ibu Akashwani le in kasata ngejarang phunchok wangmo nasna sulsana jat Shilo Narendra Modi's during economic advisory council le thusmi gunthang yampo chokspe chokso jatenok Shilon tang councilors Gyalchil Danika Gunor Paljore nasluk sinanga pharbups yodiringsla Gyagari Gunor Paljore nastangsla maayar gas tangche sipia samchul tang spaspes nasuk jigika tostur jatenok itus mije phustang stang chonglas laskha gun chanyum stang demo borche sipia thapslam Natsuk Jigiskor Lang Sundro Zatenok. Shilon Narendra Modi's Gyalchil Danika Gunor Ritoga Parbups Yodin Jigang, Gyagari Gunor Paljori, Shmangdan Artanpo Lusti Yotenok Moltok, Skujaps Narendra Modi's Damani Nanga Dang Halam, Sgor Chewas Tungis Dang Gugya, Dunchi Tsadika Yargasi Charjiguni, Gozuk Artendil Zatin Pin, Itus Shilonis, Mimas Sospa Jigasun Shatsalin Jig Gyagar, Gyalchil Danika Gunor Paljori Toga, Shukchantanyampo Yargas, Chunyut Kan Yulguni.
1: दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है
0: Sham Rzong in Nanga Junglam Chinmeka safety, young Nashunshko Bitsirkis, Kulashkar Jibzaches, Tang Rzong Gangpe Nanga Itoa Taldikun, Stanpo Churches, Skolar Zong Spun Kunzes Angme, District Highway Safety Task Force, Tsokspajik, Tsokstiot can last day to Smiguntangampo, Tsoksazate, Nok Tsok Space Cups, Galamika Shunshkup, Mimase Shunshkup, Tuskap Zurpe Donglen Churches, Itzirka, Black Sport Gun Ostak Churches, Motor Kolo Borse Nasang Ostak Choste. Yargas atangches tang laskhus panchuni parla roxdel yong goshes atsugskuni ka tosdur gas pazatenok zongsponis galami shkengan gothap choches pia safety protocol ka tampu choste laglen chogoshes khakchan gyurte yot khan bekashes saltenok etus delud laskhus sponbo gunes taxerings la safety initiative dulin yot kan gunes ko la shadazadinjik mimangs kuni na hago spelches tang tuskap zurpe donglen choches pia talde kun ergaspa chun yot kan isko la shadazatenok sok space caps shungshko bi pia dani zue nas chatang tuskap zurpe ringsla gozdum chakan thunshken khakchan Kakchan Gun, Yodmi Yodis Kurlang, Shkajib Zatenok, Itus, Shamir Zongspunis, Laskun Sangmalajik Tangchik Stun Te Roxdel Nyampo, Mimang Seshushko Betoga Charlas Zaches La, Gaspela Zatenok, Kongis, Dus Tusika Zixtok Zaches, Hagos Pelches, Las Gul Shulches Tang, Shunshkop Tang Delte, Tonsa Gunika Gurspa, Las Shulchesika Shetsaltenok. Le daidi choksne bal vatika mela transportang yampo taldik choaza tenok e ringsla rizo espeton lopta khang sosui lopto guni choksne lopte rixsal creativity tang innovation gun altana za tenok e dus ladaks ujungas de lopte yontan laskhare dungchi bhanu prabha skundun sui chu latu za za tenok yangkong is khak sosui nanga dandur taldik chos de angrim lon khan Lopta Kangun La Solas Gun Goste Saltenok Danduri Kaguni Tone TLM presentation in Anga Karnak Lingi Model High School Ang Tangpo Bingtenok Performing Art Kagenanga Gyagari Zindagyatpe Speton Lopta Kang Ang Tangpo Bingtenok Inna Degree Miss Cups Dr. Lotus Rabge Sesto Mazatkan Boti Rhyme Si Gozuk Stendel Zadinjik Dr. Lotus La Itoa Charlas Gangshan Zatkan Bosch, Siva Pulazateno. Zamnik Shil Danika Koryuge Jak Stitches, Sipia Din Choglam Sarinanga, inspired by nature, for climate, for our future, Joji Nangloga, during CII Foundation is Municipal Committee Choglam Sartan Zundela, HDFC Bank, Parivartan Tang Roxdela, Gachin Mildanika Sandelas Guljik Shulazateno, Sandelas Gulbo, HDFC Choglam Sarneguzuk Joste, Choglam Sari Tom Gangpunanga Taldik Joste, Noldoms Mindagan. Sumchu Sorugis, Sangde Laskulinanga Kaklentenok, Diring Shulkan Sangde Laskulis Kola, Joglam Sir Tommy, Merchant Association Etipa, Fayazul Rehmanis, Shadazats.
2: Dasangata, Zampa, Mata, Municipality, and Jurisdiction, and Sompanipala, Gata Zampa, Nalisangata, Lamo Sontenok, Tufia, Municipality, and Azimani, Nintapani, Tuzichi, Watonikoni, Mune, योग से लगमो चोस से जड़ू वड़ू मता ची ना गंदगी योजना कुत्ती छरु तेने युवा जी गिट्टे हो रख तेने दक्षा इक चोगलम सर ला धिम्बे नंग निंग्स क्योंमेस पेर एक ची दुखजना इक धिम्बे नंग पोमो लंगा जा मा दिक्कत मौको छरुक चाहे जने इक नजा प्रॉपर नजा इनका पब्लिक टॉयलेट सिंह मेट तेने तेल फिया नजे पूरा हटी पे छाप सुतेंगे म्युनिसिपैलिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ला म्युनिसिपैलिटी नजे तेने बॉडी आगे नींद तक रिक्वेस्ट चुन जो बक्सेस योग तक गया बात मजे कॉम्प्लेक्स त्यो मजे रिनोवेटिव मोलते तेने त्यो ज्ञान न त्यो मन नाता पब्लिक क्वालिटी नाता रंपा मार्केट ना यूज जिम्बे ना खपचान दु कुछा नाता दिख दु पमो ला जिम्बे प्रॉब्लम छो तेने का मी छिमी मा पाऊ दु विजिटर्स मा पाऊ दु तेने जिम्बे ना मछलवा छो नाता का मेन नाता मार्केट ची नाता पब्लिक कन्वीनियंस मेन ना जिम्बे ना छलवा छो
0: जमलिंग खोरियो की जगह स्कप्स बीजेपी किसान मोर्चे थुजदे जिक ठेपा लोबजंग लर्जे गोशको नंगा जगमा निसि खन्ना गमियो लिजिक्स खोर जाते जिंगबत पगुनता न्यामपो थुक दे जलता सालते नो इतुस बीजेपी थुजमी गुनेस जिंगबत पातांग गमियुल पगुन न्यामपो स्टेंडिल चने साजिंग बत के चोजेस जोसमा मनखन रंगजिने लुट कोलचेस गुने नमजे फिया साखा बोर्चेस तंग चंगथांगी नमला टंगमे जस्ते छोलता युखन गुनेस को ला टोस दुर जाते नो यांग गमियुल पगुने शकलास तोंसा गुनंग याना जाते नो इतुस बीजेपी किसान मोर्चे ठीपे खन्ना गमयु लिजिंगबत पागुनेश खलास अतोंसा गुंडेल्यु स्पोनबो गुनसुक पाठो जुगजेस तंग जिंगबत पागुन तंग रेबो पागुने रेदो तश्कुप्स द बोर्चे से पियाचे सा थोकने सुंडु जाचे से लोकल सालते नोक जिस्कोरिस कप्स नसे मीमांस कुंतंग या पोटोस दुर ग्याला सुंगते नोक यांग खोजुक सुंगशकुप स्टांजी चानी साबत तंग चंगथंग गमयुल गुल्ला एयरगेस तंग चसे थोगा लोथक चातियोत खानबो शिकर नलदा बजाते नोक आकाशवाणी लीगुते लदख सिनांगा नासुल गुनगे मेनांगा लांजी संजेस पुलिन जुग्योत लदख से नसुल नगा तो छुसोत गु निमे छुसोत निस तंग स्कर्म नगा चुंगा फितो छुसोश नगा तंग फितो छुसोत दुन तंग स्कर्म चुंगे का संतु बिन जिगे नोक इन्ना चोक्सला मीमांस गुनिस छिसोक्स पेला मिकांग लदख से नसुल संतु जसे नोक मीमांस गुनिस यूट्यूब का ए आई आर न्यूज ले एक्स हैंडल का ए आई आर न्यूज ले एट द रेट प्रसार भारती तंग फेसबुक पेज का ए आई आर न्यूज ले का आकाशवाणी ले लदख से नसुल गुन संतु जसे होते नोक आकाशवाणी ले ने ता नसुल थोन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर

0: है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmoline, soybean, sunflower, mustard, groundnut, sesame oil, rice bran, cottonseed and corn oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilogram, 15 kilogram and 20 kilogram. In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajneesh Agarwal filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly. Senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mansoor MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for 3 Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said during the meeting both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
2: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
1: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the youth for Viksit Bharat,

dak sang je rang aging pe sung ska tigrim sana cha dering e tigrim pul kan in pin hasina banu yang tigrim e ko tik chat kan in pin sona mang chu medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur fm megahertz 101.1 megahertz par hum akashvani ke liye kendra se bol rahe hain. प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों के कार्यक्रम.

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस मनपसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाइयों, अपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं सुनिधि चौहान को, दोस्ताना फिल्म से। गीतकार है अन्विता दत्त गुप्तन और संगीतकार है विशाल शेखर।

अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार और के को आशिकी टू फिल्म से। आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम को बदलापुर फिल्म से। गीतकार है प्रिया आचार्या और संगीतकार है सचिन जिगर।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल को है बेबी फिल्म से। आइए अब सुनते हैं अलीशा चिन्नई और साथियों को इश्क विश्व फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक।

अभी आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और शान को दिल है तुम्हारा फिल्म से। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: ngaji akash mani lene jun chik tangin kasata tu so chape singne ladak sana na sultang dilshat sana chat
1: Mumbai na yetup Z short film contest nistong ishur saruk chakan benanga Ladakh si lognyan rdutpa lognyan gyalchur si soldes namshes poa Mariur Ladakh film society thipatang thuzmi changme chokne skujab siriang dulon potang skujab strashil dawa niskoa singing ne trashis delek juazaduk
2: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें

0: La pantox chotmez jik lepche sinok molen je khonges sojung e gyalam tangshkalde ni lon po neten gatkari ya zuje leka gyangkhung phuche si charji phyar mangdan bora za ches patu je che je juwa za te nok inna tusla zdepun zurba ta shi gyalsa nis zuje leka gyangkhung phuche po ladax pa mimangs kuni tus yundungi do dun jig in pin yang ibe ladax si lifeline jig chulla mimangs kun la jab stok phulcha sinok mol tok ina sul gun nge jarang lan gyasla akashwani lene sanchez la phulin jig in Shilo Narendra Modi is during Economic Advisory Council le thuzmi guntang yampo tsokspe tsokstu zate nok Shilo Ndang Council is gyalchil danika Gyunor Paljori nasluk sinanga pharbubs yodi rings la gyagari Gyunor Paljori nastangs manga yargyas tangche si phia samchul tang spaspes na chok jigi ka tos dur zate nok itus mitse phus tang stang chonglas alaska gun changyum stang lemo boshche si phia thapslam sna chok ji skola sungro zate nok shilo narendra modi s gyalchil danika yunori thoga pharbub se yo din jigang gyagari gunor paljori esmaldan tan polush ste yo te nok mol tok skujab modi s damani na nga dang halams gosh chewa stung ni stang gup gyal dun chui chadika yarga si chaji guni gozuk stendel zate in pin itus shilo nes Mimang soxpa jiga sung shat salinje gyagar gyalchil danika yunor paljori thoga shukshan tangyam puyar gyas chunyut khan yulguni thone chik inok molte shada zate nok. Yuli rangwang eton la barsun zat kan Munshi Abdul Asatari tongja eskaps dering le nanga skushek se putsa Riyas Ahmed is le nanga satpil soxpa jig boda zate skushek se chaklas gunes ko la shada zats.
1: उनके जीते ही मिला था ये इंदिरा गांधी जी ने 1971 में उन्होंने भेजा था सारे हिंदुस्तान में उनका नाम जो है जंतर मंतर में नाम है जो सारा फ्रीडम जो स्ट्रगल में है उनका नाम उधर है तब उन्होंने ये वाकई ये फ्रीडम फेटर है क्योंकि इन्होंने आजादी के लिए जेल कर दो दिया है वो सारा देखभाल करने के बाद उनका फ्रीडम फेटर और एक सर्टिफिकेट दिया जो इंदिरा गांधी के जन्म 1970 में उस वक्त वो लद्दाख में पढ़े लिखे बहुत काम होते थे उन्होंने उर्दू में एक अर्जी नविस के नाम से काम करता था जिसकी वजह से उन्होंने एक पेपर लिखा है जो मैंने अभी बोला जो आजादी हिंदुस्तान को कितना जरूरी उस वक्त वकील कुछ नहीं होता था तहसीलदार और डीसी जो है ना वो जज की तरह काम करते थे उन्होंने जो पेपर वहां से आते थे वो पढ़ा तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो आजादी कितना जरूरी इंसान को जो अंग्रेज के और जो यहाँ हिंदुस्तान में जुल्म और लद्दाख के जुल्म को देखकर
0: Human papilloma virus vaccination is called Lahago Tanza Sedigrimjik, Saktis in the Chungis Pelopta Kaina, Daldik Choaza, Denok, Itus Loptuk Pomogunla, Ayushman Arogya Mandir Saktil, Danikams de Sunasika, Dr. Jigmed Wangchugis, HPV Skola Shadazatenok, Itus Loptugunla, Cervical Cancer Tang Ivo, HPV infection is just the Yunkan, Yang Cervical Cancer Goktap Chuchesipia, HPV vaccination Tanches, Kachan in Kaniskola Shadazatenok, Dr. Jigmed Wangchugis, Shatkananjin, Cervical Cancer. Cancer bo cancer inang ne sungun gokcho dubche chani cancer risk se jige inok te phia cervical cancer nishkopche si phia tus thoge ka HPV vaccination tangches khachan in khan school la shada jate nok i tus arso jungi khams de tang nang chang phande lon kung se chhos ne HPV vaccination degree me nang loga rang lo chubji lon khan ospa chan pomo changma phia cervical cancer nishkopche si phia rin met pa HPV vaccination tangche si digrim porte yut khan score lang shada jate nok i tu so lop thu gune na nga HPV tang dil te lorigus kun HPV khams de phia thangs pu tang phantok sa chan in khan score yang i thoga thesum tang nam tok yut khan gun sela jate nok inal de ches chik ne che sum chu chuk pa khet bachao abhiyan yang na jingun shkop juste lasgul shulin yut khanbe khachige chulla nubraj zongi khardung hundar tang takshi gamyul gunina nga krishi vigyan kender kevike le chosne inalde se se ji tang shnge jagunla jingbat pagunla hogutang che se lasgul je ka shulla jate nok il lasgul shulcha se migji shtanji chani sabadi cirka ayar gas tang ches sabadi khams Sagyadi comes the shkops the borches, Jingbat Patan, Sandik Paper La, Deluxe Manga, Gashukches, Jingbat Pagun La, Tusigos, Domtang, Stunte, Gamul Susil Danica, Zotapsi, Toga, Lamstun, Salches, Gun, Inok, E. Degrimis Cups, University of Ladagi, Vice Chancellor, Professor Doctor Saket Kushwaha, Skundun. Sajing Badge Judges, Yang, Stanji Janimitse Pust.

0: पर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: 2020 के दौरान 7.7% की शरह से तरक्की की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को शुरू करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार दुनिया की तेजी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस्लाहात का अमल जारी रहेगी और इस दौरान बुनियादी ढांचे को दवाम बख्शने और गरीबों के लिए बहबूदी स्कीमों की तरफ खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: दरी हंसना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज नई दिल्ली में वजीर आजम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्द हुई जिस दौरान उन्होंने आलमी सूरत हाल के पेश नजर भारत की मईशत को मजीद दुआम बख्शने से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईज ऑफ लिविंग बेहतर करने, नई तजारत के तौर तरीकों को आसान करने जैसे मौजूद भी जैर बहस लाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जमीनी सतह पर नशियात के खिलाफ उठ रही आवाज को तकवीत बख्शने में नार्को टेररिज्म का खात्मा करने के अजम को दोहराया है। आज किश्तवाड़ में मनुष्यात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 56 दिनों के दौरान 19 जिलों में पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत करके इस नासूर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मनुष्यात के धंधे के तानेबाने को खत्म करने के लिए कोई भी तकीका फरोगजाश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां हर एक नार्को दहशतगर्द को ढूंढ निकालने और ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू से की थी और उन्होंने तमाम अजला में मनुष्यात मुखालिफ पदयात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की कयादत की। अभियान की शुरुआत के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनुष्यात के नेटवर्क को खत्म करने और इस धंधे में मुलविस लोगों के खिलाफ करार वाकई सजा दिलाने के अजम को दोहराया।
2: ड्रग स्मगलिंग रेलवे तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर मनुष्यात का कलाकमा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक लेक्चरर नजाकत अंदलीब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: नशा हमारी नौजवान नस्ल के ख्वाबों, सलाहियतों और मुस्तकबिल के लिए एक खामोश तबाही बनता जा रहा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के करीब रहे, उनकी सोहबत, रवैयों और जरूरियात पर मोहब्बत और तवज्जो के साथ नजर रखें। आइए मिलके अपने नौजवान को इस अंधेरी राह से बचाएं, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल की उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल है।
0: इधर पुलिस ने ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए श्रीनगर में हब्बक क्रॉसिंग हजरतबल के राहिल मंजूर मल्ला और कील खान गली अपर सोरा के आदिल रशीद गुड्डू नामी दो ड्रग स्मगलरों के 3.5 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी मकानों को अटैच किया है। पुलिस ने मनुष्यात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलवामा में कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पुलिस ने मल्होरा जैनापोरा शुपया मोहम्मद अशरफ अलाई नामी ड्रग स्मगलर का 18,51,000 रुपए मालियत का रिहायशी मकान अटैच किया। पुलिस ने केलर के इलाके में काफी मकदार में खशकाश की काश को तबाह कर दिया है। पुलिस ने पुलवामा जिले के मारवल और खिदरमू इलाकों में मनुष्यात फरोशों से 4 जायदादों को छुड़ा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकोट किश्तवाड़ में श्री गौरी शंकर मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में अमन अमान और लोगों की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और कई एक मसाइल को हल करने के मौके पर ही हिदायत दी। इस मौके पर असेंबली में हिजबी इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, किश्तवाड़ की असेंबली मेंबर शगुन परिहार और कई दीगर अफसरान भी उनके हमराह थे। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज सतवारी जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मयार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बाद में उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और वहां जारी तजदीदी कामों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज देने और लोगों तक मयारी सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे हेल्थ सेक्टर के असलाहत की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के टर्शियरी केयर अस्पताल में तिबी सहूलियात को मजीद मुस्तकम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान सेहत की शोबे की दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। मरकज में एनडीए हुकूमत ने 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासरात।
4: मैं सोफी सजाद अश्मकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खुसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है और उसको मेडिसिन भी इस पे फ्री मिल रहा है। हम दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मशकूर हैं।
0: दरियासा सियाहत और कल्चर के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 12 वर्षों के दौरान शमसी सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 4 मिलियन से ज्यादा घर शमसी तवनाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरिए शोबे में भी शमसी तवनाई का इस्तेमाल दोगुना हो गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रखशान राबी ने आज बांडीपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क की अजीम तारीख और बीजेपी की तरक्कियाती नक्शेराह पर रोशनी डाली। उन्होंने कुपवाड़ा में भी इसी तरह के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा में आज चौथे 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसम ने जम्मू कश्मीर में पर्पल रेवोल्यूशन के मुस्बत पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर सीएसआईआर आईआईएम जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर अहमद ने बदरवा में लेवेंडर काश्त की हौसलियाबियों का खाका पेश किया। जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर में मुनाकिदा एक अदबी तकरीब के दौरान वादी के एक मारूफ कलमकार मुसन्निफ तर्जमाकार और फिल्म साज गौरी शंकर रैना की तस्नीफ करदा किताब यू टर्न एंड अदर स्टोरीज की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मारूफ तालीमदान और शायर पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज अमीर रोड श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर यास्मीन फारूक के अलावा मारूफ मुसन्निफ और नकाद प्रोफेसर फारूक फयाज ने मेहमान जी वकार की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। तकरीब पर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, डॉक्टर रफीक मसूदी, मुश्ताक अहमद अली खान, निसार नसीम, एहसानुल हक चिश्ती, डॉक्टर आबिद अहमद और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में गौरी शंकर रैना ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा तारिक राहतर के साथ बात करते हुए कहा,
5: बेसिकली ये किताब मैंने कश्मीरी जबान में लिखी थी। ये काफी वर्षों में लिखी गई कहानियां हैं जिनको कि मैंने बाद में 2020 में पब्लिश किया था और 2021 में ये यहाँ पर श्रीनगर में ही ओरिजिनल किताब रिलीज हुई थी। उसके रिलीज होने के बाद कुछ अफसाने बहुत पॉपुलर हुए, लोगों को बहुत पसंद आए जो पढ़ने वाले थे कहानी। कई दोस्तों का ये इसरार था और अंग्रेजी में भी अगर इनका तर्जुमा हो जाए तो उन्होंने इस तर्जुमा किया उसका, इस किताब का जो ओरिजिनल कहानी है इसमें ओरिजिनल किताब है जो कलेक्शन है उसमें 9 कहानियां हैं, लेकिन जो अभी अंग्रेजी का तर्जुमा है उसमें मेरी कुछ जो रिसेंट नई वाली कुछ कहानियां हैं वो भी शामिल की गई हैं। आज का ये फंक्शन जम्मू कश्मीर अकादमी की तरफ से ही मुनक्कद किया गया और रिलीज फंक्शन हो गया।
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ماحولیات کے سلسلے میں اپنے پیغام میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حیاتاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. انہوں نے ممتاز مولج اور مصنف ڈاکٹر جاوید اقبال کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج اپنے حلقے کا دورہ کر کے وہاں ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. دریاسنا پارٹی کے ترجمان تنویر صادق نے زیدیب الحلقے میں 13 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کو منظوری دینے کے لیے وزیر اعلی عمر عبداللہ اور متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کیا. کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی طرف سے آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نواقدل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس دوران طلباء اور عام لوگوں میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کی گئی. تقریب کی نظامت کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر طارق عبداللہ نے انجام دی. پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی اور کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے اس موقع پر خطاب کیا. بعد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
6: بچوں کے تھرو ہم عام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے بیماریاں ہوتے ہیں, جیسے چھاتی کی بیماری ہوتی ہے, دل کی بیماری ہوتے ہیں اور سٹروک ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. جانکاری ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس نشے میں مبتلا مت ہو جائیے. یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں, جتنے بھی آرگنز ہیں, ان پہ افیکٹ کرتا ہے, کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ جو نقصان ہے اس کے اثرات 50-60 سال کی عمر میں دکھائی دیتے ہیں. کبھی خدا نہ خواستہ کینسر کی بیماری ہو جائے, اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ اس کا یہ جو علاج ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. اگر نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے وہ کینسر سوسائٹی کے طرف رجوع کر سکتے ہیں.
0: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی صدارت میں ان کے کھمبر رہائش گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں پارٹی کے کام کاج اور جموں کشمیر میں حالیہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی, پی ڈی پی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین عبد الرحمان ویری, جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہنجورا, پارٹی ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ اور کئی دیگر لیڈران نے بھی شرکت کی. ڈائریکٹوریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کی الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے فیس جمع کرنے والے امیدواروں سے کہا کہ وہ دستاویزات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے الاٹ کیے گئے کالجوں میں 8 جون سے 10 جون تک رپورٹ کریں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
7: جو راؤنڈ ون میں ہم نے الوکیشن کی تھی اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈینٹس کی, اس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا فی سبمیشن کا. تو ابھی تک اراؤنڈ 27,000 پلس اسٹوڈینٹس نے فی سبمٹ کیا ہے, لیکن ہمیں بہت سارے ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے, فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے, منڈے شام کو 5 بجے تک کھلی رہے گی. ابھی اور 2 دن کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں. ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کو منڈے سے جانا ہے کالجز میں. منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن, وینسڈے تک وہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں کالج میں. جس کا جہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہاں وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جائے گا اور ان ڈاکیومنٹس کا فزیکل ویریفیکیشن ہوگا. وہاں پر ایڈمیشن ڈیسک جو کالج کا ہوگا وہ ان کو اس کا فزیکل ویریفیکیشن کرے گا. اس سلسلے میں کالج اپنا ایک شیڈول بھی نکال سکتے ہیں, جیسے بڑے بڑے کالج ہیں جہاں پر 1,000 بچے یا 1,000 سے زیادہ بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں, وہ اپنا شیڈول بھی نکال سکتے ہیں کہ پہلے دن وہ کتنے بچوں کو انٹرٹین کریں گے, دوسرے دن کتنے کو اور تیسرے دن کتنے بچوں کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا.
0: بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج اکھنور ضلع میں جاری آؤٹ ریچ مہم کے تحت متعدد اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے اشوک کول کو مختلف سیکٹروں میں درکار اصلاحات اور دیگر معاملات سے روشناس کرایا. دریاسنا بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے ملک کی معیشت سے متعلق بقول ان کے کانگریس کے غلط اعداد و شمار کے لیے کانگریس پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک تیزی سے اقتصادی ترقی حاصل کر رہا ہے. اب ریل سے متعلق یہ خبر. ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کی موثر کوششوں کی بدولت جموں اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے 111 ٹن گلاس کو کامیابی کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں تک پہنچایا گیا ہے. سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر جموں اچت سنگھل نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے گلاس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے وعدہ بند ہے. انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گلاس اور دیگر زرعی پیداوار کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے سہولیات کا بھرپور فائدہ اٹھائے. द विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल और परसों शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स श्रीनगर में 20वें एशियन गेम्स जापान के लिए भारतीय

0: टीम के सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स का इनेकाद कर रही है। इस हवाले से नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हुंडू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
1: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कैंप लगाया सर अहमदाबाद में, तो अभी हमारा सर 20 मई से लेकर 8 जून तक यहाँ पर कैंप चल रहा है सर नेशनल कोचिंग कैंप, ये सर 23 जून तक चलेगा सर। इन बिटवीन सर हमें इंडियन ओलंपिक की तरफ से डायरेक्शन चाहिए कि फाइनल टीम हमें बाय नेम देनी है सर बिफोर 10th ऑफ जून सर। विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम ट्रायल करेंगे श्रीनगर में सर 5 से लेकर 8 तक सर। हमारा कल फिटनेस टेस्ट था कश्मीर यूनिवर्सिटी में सर, आज वेइंग था, कल सर हमारा स्पेसिफिक टेस्टों का जो मेन है फाइटिंग का और जिसमें तावलो इवेंट है दोनों, उसमें सर जो स्पेसिफिक देखेंगे सर टेस्ट करेंगे सर, जो बेस्ट होगा हमने सर 13 खिलाड़ी निकालने हैं सर।
0: और अब मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।
2: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। मनुष्यात के खिलाफ जारी मुहिम एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसका सबूत नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में भरपूर अवामी शिरकत से मिल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अज्म का इआदा किया है कि मनुष्यात और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जारी रखा जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जा सके। इस मुहिम का नुमाया पहलू वो आदादोशुमार है जो गुज़िश्ता 56 दिनों की कार्रवाई की अक्कासी करते हैं। इस अरसे में 1036 FIR दर्ज की गई, 1128 मनुष्यात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, 100 से ज्यादा जायदादें जब्त की गई, तकरीबन 700 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए जबकि 130 मनुष्यात स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश की गई। एक ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने 3,50,00,000 रुपए मालियत की जायदादें मुंसलिक की। ये आदादोशुमार इस बात का सबूत है कि इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम मुश्तरक तौर पर मनुष्यात के चैलेंज से निपटने के लिए सरगर्म अमल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मनुष्यात का मसला महज समाजी या सेहत आमा का मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती से भी जुड़ा हुआ मामला है। मनुष्यात स्मगलिंग से हासिल होने वाला सरमाया दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर होता है और अमन तरक्की व इस्तेकाम को भी खतरात लाहक होते हैं। इस तनाजुर में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। मुहिम का एक इंसानी पहलू ये भी है कि मनुष्यात की लत में मुब्तला अफराद की बहाली को तरजीह दी जा रही है। इलाज और मशावरत फराहम करके इन्हें मुआशरे के मुफीद और फ़ाल शहरी बनाने की कोशिशें जारी हैं। इससे ये पैगाम मिलता है कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्ती और मुतासर अफराद के लिए हमदर्दी दोनों पहलू साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम एक ऐसी अवामी तहरीक बनकर सामने आई है जिसका मकसद मनुष्यात का खात्मा नीज महफूज सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल की तामीर है। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
3: मुझे आकाशवाणी लेने कासद चुचोत क्या तंग फेचुक पा संजिन पाल जोर तंग दुर्जे गेल सन इसके सल कने जुंगलूरी सन चाद

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का

0: सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 3 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोल्स ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है. मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी.
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है. किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया. 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी. मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है. जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है. फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया. आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया. उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है. गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है. फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया. भारत ने 6th बार ये खिताब अपने नाम किया है. अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है. पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है. न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं. कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली. ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की. देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की. केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया. इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की. कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं. कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा. जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता. भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts Under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
7: In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajnish Agarwal, filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly, senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. The Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for three Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is the 8th of June. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the road mishap in Ferozpur, Punjab today, which claimed 9 lives and injured several others. In a social media post, the Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was still today. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Vikasit Bharat by 2047. Addressing the youth for Vikasit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. He added that 65% of the country's population is below the age of 35, making India one of the youngest nations in the world.
8: About 65% of the country's population is below the age of 35, which means India is a young nation. To channel the strength and potential of this youth towards the vision of Viksit Bharat, Prime Minister Narendra Modi has launched and implemented various initiatives and schemes.
9: Narendra Modi ji ne kara hai.
7: Union Minister of State for Communications and Rural Development, Dr. Pema Sani Chandrasekhar, today inaugurated the Samriddhi Kendram at Narakoduru village in Andhra Pradesh's Guntur district, marking a major step towards rural digital transformation. The center has been established under the central government's BharatNet Udyami initiative. With this, Narakoduru has become the third village in India and the first in the Telugu states to host the integrated rural development model. The Samriddhi Kendram brings together 11 essential service sectors under one roof, like health screening, telemedicine, soil testing, skill development programs, high-speed internet and free Wi-Fi, among others. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories

0: बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया का तनाज़ा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इत्तला मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुज के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। ककामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए, जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसी का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी परगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इंफरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर

0: सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांस्य का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Kasata nupchuk sile ong sirigrim sanatsa, diringi digrim pulkan yang chanlamu.